0: बच्चाहरूलाई घरमै बनेको पोसिलो खाना 6 महिनापछि अनिवार्य रूपमा शुरूवात गरौं। अन्न, गेडागुडी, सागसब्जी, फलफूल सहितको पोसिलो पूरक खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। पूरक खाना सँगसँगै 2 वर्षसम्म स्तनपान पनि जारी राखौं। रेडियो टाइगर 99.2 MHz र स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

प्रिय मैगर कवि लाहुक्र जय मसीह और नमस्कार। मैं अपना हुकन के सामु महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटू। आज हमरा परिवार का न शीर्षक मा वचन हेर जाए कवि लाहुक्र। आज हाम्रो संसारका सबसे महत्वपूर्ण सिकाइन ठाउँ बारेमा बात बटाइ, जुन ठाउँ चाहिँ परिवार हो। सैतान ढ्यार तरिका से परिवारमा आक्रमण गरत, जुन बात महिन अचम्मित नै बनाइछ। काकरकि परिवार चाहिँ आधारभूत ठाउँ हो। अपना हुकन थाहै बा, परमेश्वर थारू ओ जन्मिकैका मानव जातिक शुरूआत कैला। परमेश्वर सिक्न ठाउँको रूपमा परिवारका निर्माण कैला। परमेश्वर थारू ओ जन्मिद्वारा लड़का बच्चा उत्पादन कैला। ओ यी पारिवारिक परमेश्वरका परिकल्पना कैलक बाट हो। ओर से सैतान परिवारमा आक्रमण गर्ती रह। आज काका ध्यार परिवार अनैतिक काम से परिवार टुक्रटी बा हो। काजे क्रिश्चियन मण्डली फे विवाह विच्छेद का बात महत्व पहिला बात महिन माफ कर भी। मैं इस सब बात बताई दू, ये बात महिन डर लगाए कि संसारिकपन अविश्वास का कारण आज मण्डली में रहल परिवार एकदम दुखित हमरा देखती। का ये बात हमार लाग डर लगती दुखक बात नहीं होता? ये चाहिए एकदम नहीं हीना बात हो। आज संसार परिवार में ध्यार नहीं मजा प्रभाव छोड़ती बा। ओ अनैतिक संबंध चाहिए सैतान चलेलक हथियार हो। मने हुकर विचार करता ये चाहिए थारू थारू बीच हीना बात अथवा एकल लिंग रहल मने हुकर बीच में हीना हो। ओ कतरा जना संबंध है भाज का उपमा फिर देखा। ये मेरी बात आजकल हमार नेपाली समाज में और नेपाल देश में हमार ठाव में हुई थी जाए था। ये बात से यह प्रमाणित हुई था कि परिवार में फिर आक्रमण हुई थी बा। परमेश्वर परिवार का परिकल्पना कैला ओ बनेला। तर ई मेरिक परिवार नाही जाति कहवेला। जब अपना एक थारो जन्नी है हेरबी हुकनक लड़का बच्चा रथिन, ओ लड़का बच्चा परिवार का एक हिस्सा रथा। तर ई लड़का बच्चा न पहिना से शुरुआत चाहि थारू ओ जन्नी की यात्रा से शुरू हुई था। पहिल बात तो बुझी थारू ओ जन्नी कसी का हुई पर था या कर लाग अपना पहलो पत्रुस का पुस्तक है। पहलो पत्रुस तीन अध्याय भाजक बारे में बताए। ई घटना में विशेष कई का विश्वासी जन्युआ हुकरन पावल कथा जे विश्वास नै करल मनैया से भाज करल। ई कसी का हुई हमन ठा नै हो। हुई से कि उकरा दुनु जे विश्वास कर सकी। ई फिर हुई से कि भाजक पाछा उकरा दुनु जे विश्वास से पाछा हटा सकी। हुई से कि लौंडी विश्वासी हुई वो लौंडा चाहे विश्वास करने इनकार कर सी। वह से पावल सीखे था कि कसी का एक जन्नी मनैया व्यवहार करना वही एकदम महत्वपूर्ण बा। ओसे के साथ पढ़ मा के क्रिश्चियन थारू मनैया अपन जन्नी है कसी का व्यवहार कहना करना बात है बात बटेल बाट। ई दान से बृहत रूप में बटेल बा। ई थारू और जन्नी मनैया एक संबंध है येसु और वहां मंडलिक संबंध से उजागर कैल बा। ई चाहे एकदम सुहावन संज्ञा हो। मंडली येसु ख्रीस्त का दुलही हो। ई बात कारण ले क्रिश्चियन परमेश्वर का परिवार का मनै हुकर कई का धर्म शास्त्र देखे लगा। हमरो परमेश्वर का संतान हुईटिका ना बाट अपना देख। अब अपने ये मेरी विचार है ले ली वो अब हमरो फेसबुक परिवार का ना बात हम जाए का येसु परिवार जोर जाम करक लागि संसार में आईला। ये बात है एक अच्छी सोची। जब येसु स्वर्गरोहण हुई ला वहाँ 33 वर्ष का रहा। येसु इस संसार में जवान होकर आई सकता तर वहाँ उसी नहीं कहला। वहाँ शुरुआत से गईला कन्या मरियम का कोख से जन्म लेला। परमेश्वर वहाँ वचन खाम में धरा सक येसु कोख में पठेला।

मानव रूपी चोला लेकर इस संसार में जन्म ले और से यीशु शुरुआत का ओ अंत तक परमेश्वर हुई था ओ आप वहाँ शरीर में जन्म लेला वहाँ की जन्म कौनो मनैया और जन्निक समागम से हुई लग नहीं हो तर इत पवित्र आत्मा शक्ति में कन्या मरियम जन्मेलक बालक के रूप में वहाँ आई मुख्य बात चाहिए वहाँ पाप रहित रहा यीशु के लिए एक मनैया हुई जे पाप रहित रहा विचार करी यीशु जन्म में पारिवारिक संबंध बा था बा एक बच्चा अपन काम कर नहीं से करना रहा हो कि नहीं हो अपना हुकनक लाग स्वाच परट हुकन खाना खवाए परट हुकन सुरक्षा दिया परट असह आकुर काम और जय कई दिया पड़ता और से जब परमेश्वर थारू और जन्नी मनईन बलैला हुकर बच्चा जन्माए सेकन ओ पारिवारिक वातावरण है सिखाईना वातावरण बनाए सिखा एक और मानव जन्म लाग थारू और जन्नी एक हुई पड़ता तर यीशु संदर्भ में फरक बा ये चाहे अचमक बात नहीं होता अब परमेश्वर का योजना चाहिए मंडली की योजना हो इस बारे में एफिसी पुस्तक दांचे बात हमन बताए कि मंडली परमेश्वर का परिवार हो उ परिवार का मुख्य अथवा सिर परमेश्वर हुई था तर परिवार का विचार चाहिए अपना परिवार में स्वीकार योग्य हुई बात अपना दाई बाबा अपना है ध्यार प्रेम करता ये चाहे वहाँ बारे में बुझना तरीका हो इ बारे में एक अच्छी सोची मई मेरी खत्म नंबर आन का घर जाए नहीं सीखा जब मैं वहाँ जिम महीना सबसे दुई चार बात सुनई ही सब कोई दुई चार बात लगाई ही मोर बारे में नहीं मजा सोची ही वाकर लाग का अपना अमीन मजा कर सक इन मजा कराए लाग हमरा का कर सक अस्ता अस्ता शायद अपना सोच थी भी कभी लाऊं करा शायद अपना जीवन में यह मेरी खांचो हुई यदि वो ध्यान नहीं दे हो गिरा कारे नहीं है रखो और नहीं कर रखो या करार था अपना वही ना ग्रहण करी कलक नहीं हो बारु कही मैं तुहिन अपना आशा कैल रन हो तर यदि वो प्रयास करती बा वो नहीं मिठो कला से उन स्वीकार करी वो अपन लड़का बच्चा और जहान से तुलना जीन करी वो तुलना कतरा घाटक हुई कना का अपना जन्म बाजी था वैसे की अपना बच्चा खेलकूद में मजा हुई और बच्चा पढ़ाई में मजा हुई हरेक बच्चा जुन परिस्थिति में रहा घर में स्वीकार करक पड़ता हुकनक हरेक काम में अपना हुकनक प्रशंसा करी हौसला दी ये चाहे प्रेम से दिखाई और प्रेम हाँ दिखाई थी बात चाहे ये चाहे आत्मक क्षमादान है जनाए ये चाहे कतरा महत्वपूर्ण बा असीन का बच्चा हुकरा और मन हुकन क्षमा दिया प्रथा खाना बात सीखता कबीला हुकरा देख ली मंडली कहाँ समावेश हुई यहाँ ई मेर से मंडली काम कर सकत जब विश्वास में नहीं रहल मन हुकरा मंडली में था मंडली हुकन स्वीकार कर सक कई का हुकरा स्वस्थ हुकरा जुन मेरी अवस्था में रहा मंडली हुकन स्वीकार कर पड़ता हुकरा मंडली से स्वागत पाए पड़ता जहाँ लड़ाई झगड़ा दोमन नहीं हुई पड़ता जहाँ एकता प्रेम और शांति मंडली इस सब काम प्रेम में हुई पड़ता यीशु कला असी का तुरह मार चेला हुई तो कई का प्रमाणित कर सकबो मार संतान प्रेम में एक और जहां हुकरा एक और जहां प्रेम करता क्षमा करता और हमार मंडली असीन जब विश्वास नहीं करल मन हुकरा आईता मंडली में कल से कुछ मदद हुई सांत्वना पायल आशा पायल क्रिश्चियन मंडली भेटाइसे का करे की वो मंडली में प्रेम रही यदि मंडली में आशा बा उमंडली में सांत्वना बा उमंडली में कुछ सहायता करू या मन हुकरा बात कल से आकुर मन हुकरा फे मंडली मा ख्रिस के प्रेम ख्रिस के उ आनंद पाई से क्षमदान मा रही सहजता रही आशा रही जब सब मंडली में रही कल से खतरा सुहावन मिल गई ओर से परमेश्वर क्रिश्चियन परिवार चाहता ओर से मंडली विश्वासी न परिवार बन कई कहा चाहता ये चाहे बड़ा महत्वपूर्ण विचार हो ये विचार है अपना पक्के फे मनन कर भी कई कमे आशा कैला बात वही सब बात हेरती पत्रुस तीन अध्याय पूरे हर भी ये बात हम बुझक लाग अमीन आकुर ध्यार अपना है सहायता करी परमेश्वर आज की वचन द्वारा अपना है ध्यार आशीष है।

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊँ, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है। तो तुम क्या करोगे, रोल क्या है तुम्हारा?